उसे कभी आ जलाए मयंग को दिमेली नोंग अंते नंकान पेर माम मलां पे राजा हमे तुम चे तिगे उंगर मने ची तंके तिगे को मुझे रमे अकू मे दुआए को यको नराले मिये कभी यलाए Bilang ko dekit isi singai asingai numpu kapung ye kuta de kuta hamai ngode kaki.